मोर अच्छा निज करदा करिए सब बैरन कौआ संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब या करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारा, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद अर आलम।

तुम ही सजन सुहिले, रखो रखण हर दयाला, नानक करके कोले सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ। चंदन वास वनस्पत बावन चंदन चंदन होई, फल विण चंदन बावना,

बगला हंस न होवई मान सरोवर जाए खलोई वीहां दे व्रतारे उही बगला हंस न होवई।

Holy Dio sì. कीर्तन नहीं कराना है जिनी आवाज मेरे तो सुखोगे आवाज उन्हें कीर्तन बढ़िया होना है।

तीरथ नावादित बाबा वन पानी के नाय करी जेती सरठ पाई मेखा वेना करमा के मिला ली बात विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी गुराक दी बजाई सबना दिया काय का दाता सुमैं सरण जाय जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा में जानिया ना चला सब कोए चंगा नाम रखाए का जास कीरत जागले जे तिस नजर न आवई ता वादन पुछा के कीटा अंदर कीटा कर दो सींदो तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तुस गुण कोए करे सुनिया सिद्ध पीर सुरना सुनिया धरतवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पहिर सका का नानक भगतां सद

परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदिया पेदिया नामंगा कामं समस्तो ब्रादी समस्तस्ततामं तेरा जूर चाचरी शांदा जले है तले है पीत है पी है प्रभु है जू है देश है पेश है पुजन प्रयार शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तमं नरनाथे नमस्तमं ब्रह्माथे नमस्तमं अगंजे नमस्तमं अपंजे नमस्तमं अकाले नमस्तमं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राजराजे नमो सासाजे नमो सासाहे नमो मामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो ब्रह्मतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वक्लेशं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे आखिजे अभिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं वरणासी सदा सर्वदा हृत सिद्धं निवासी चर प्रशांत व प्रसाद अमृता कर्मे अमृता तर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंगाला कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं

प्रभुक्ता प्रभा है सुयुक्ता सदा है सदा स्वरूप भेदी अनूप समस्तो प्राज है सदा सर्वसाज है।

अनित सुनित जात है अजात है चरपट छंदवा प्रसाद सर्वंता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता ऋषावल छंदवा प्रसाद नमो दर्कनासे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विमुक्ते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्भाव मुक्ते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे।

उनका सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत, देख देख फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान।

फिराए हो मैं धीर गुरु कह दारू पिसमाए कृपा करिजे अपनी तां गुर का शुद्ध कमाए नानक कै सुनहु जनो इत संजम।

परमेश्वर दिता बना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहया सबने जाई रहा।

परम सम्मान योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जोगे अटल चवर तख छत्र दे मालक गुरता गदी ते सुभाईमान जागदी जोत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब।

करै आवत जावत जन्मै मरै। जिस कै अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे मानै आपे आप आप करतन बेरा। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिस लय लड़लाए थान थनंतर आसमाए।

ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।

पास प्रेत मुगद पाथर को तारे सर्ब रोग काउ खद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत किते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया।

न कोय। कबहु साध संगत हो पावे उस स्थान ते बहुर नावे अंतर होए ज्ञान प्रगास। उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते करंग सदा बसहे पार ब्रह्म कै संग।

संत का दोखी जन्म मरे, संत की दुखना सुख ते टरे, संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए।

संत के दोखी की पुजे नासा, संत का दोखी उठ चले निरासा, संत के दोख ना त्रिष्ट कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए।

अहम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निम खर के गुण गाए।

जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपै परवीन तह वेद कतेब कहा को उचीन जब अपने आप आप उर तहरै तव सगन अप सगन कहा बिचारै जय अपने आप ऊचे अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस

अष्टपदी। आप कथय आप सुनने हारे आप है आप विस्तार जात भावै तां श्रेष्ठ उपाय अपने पाणे ले सुमाए। तुम ते भिन्न नहीं किशोए आपन सो सब जगत परोई जा को प्रभु जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो सुंदर सी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता।

दूसर होए तसोजी पाए तसका किया सब परवान गुर प्रसाद नान के हुजान जो जाने तस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सो ओ हुतनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिसरदाय भगवंत धन धन धन जनवाया जिस प्रसाद सब जगत तराया